सबसे बड़ी बात जो म्यूजिक में होती है वो सुर होता है. सुर नहीं तो कुछ नहीं, हम कहते हैं बेसुर है. म्यूजिक की वैल्यू खत्म हो जाती है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे गजल हो, भजन हो. तो वो सुरीली इतनी है कि उनकी टक्कर का सुरीला अभी तक तो मैंने सुना नहीं.

तौबा तौबा जब जुल्फ तेरी लहराती है यूं चाल चलो न मतवाली।

0: देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा
1: भूले भूले
0: मेरी जाने क्या बिचारी तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हजूर, आप आनंद बख्शी की लिखी श्रोता मैरा की कहानी सुना रहे थे, सुनाइए ना।
1: अरे हाँ, फिर तो तेज से बोली मैना याद।

0: दीवाना हो हो हो गया गया गया
1: भूला भूला मन मेरा कहीं रिसजन हो गया गया
0: ए बहक कदम।

मेरे उम्र के कच्चे बात के सच्चे जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के

पात पे तुम रूठा न करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर तोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी।

जान उठेगा मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको यहाँ, सर के बल चल कर आऊँगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का न छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क न जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल न पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी।

नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना।

ठहरो अच ठहरो मेरी जान गई, धीरे धीरे होले होले नशा ये पिलाया किसने, फिर ये छुप के चलाया किसने, ये मीठा मीठा जादू जगाया।

মনিপা।

0: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू और

सा नाजुक बदन तो शबनम के कतरों सा रंगी पसीना, उम्र उसकी 16 बरस 6 महीना।

कम भाई कम ताला तुड़ी जोदर मस्ता छोचर बाड़ी रेल कम छो माझम पापिसले आलू दम आलू दम आलू दम धिंग पट्टा पट्टा धिंगड़ी पक्को।

0: देना।
1: रे जो मेरे
2: रिंग फटाफट ढिंग रे बाका।
3: जन के सिख घबराहट हुई जाती है।

बहुत रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

प्यार का हमेशा आँख में दिल रहता है दिलदार का नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का।

एतबार टूट गया कि सबर टूटने लगा। बहार बोलिए मौका नहीं इनकार का, हमेशा आँख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आँख

चमके डगमग डगमग नैया डोले रिम झिम पागल बरसे रामा हो गुन गुन गुन गुन भवरे घूमे झर झर झर झर झरने झूमे छम छम पायल बाजे रामा हो गैया ना।

दान है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं भाई।

प्यार का मेरे हाथों तू तू मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा सास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियाँ कितना हंसी ख्वाब है, चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियाँ कितना